इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हें बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारी इये बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश श्रोताओं तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ने तो हाँ सारे इन्हें बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

हाँ बोला करते हैं ना रेडियो गुंजन धर्मशाला ते गणेशोताओ, तो हाँ सारे ही इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक जी श्रोताओ ता बढ़ देना कार्यक्रम च अगे कने सुन देना कार्यक्रम दा प्यारा दिया अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने बंदी।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे हैं?
1: पता नहीं टीवी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार। 91 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। एक माह में केवाईसी नहीं कराई तो रुक जाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। विदेशों में रोजगार के लिए शुरू किए जाएंगे विदेशी भाषा के कोर्स। निवेशकों की पसंद बन रहा हिमाचल, पहाड़ी राज्य में तीसरा स्थान। देश में बनेंगे 3 बड़े केमिकल पार्क। 3030 करोड़ की योजना मंजूर। बीबीजी रामजी कानून लागू। 60 दिनों के पीक कृषि सीजन में बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्य। अब समाचार विस्तार से।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को आधार आधारित ई केवाईसी कराने के लिए एक माह का अंतिम अवसर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और पेंशन लाभ प्रभावित हो सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जुलाई 2025 में जिला और तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से ई केवाईसी अभियान शुरू किया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तय की गई थी। विभाग के अनुसार जिन लाभार्थियों का सत्यापन अभी शेष है, उन्हें एक माह के भीतर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर ई केवाईसी पूरी करनी होगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की पहल की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की विदेशी भाषा के कोर्स शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य के जरिए युवाओं इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम रही है। युवाओं को भाषा कौशल के लिए नए विदेशी कोर्स शुरू होंगे। सुक्खू ने कहा कि सरकार विदेशों में कार्यरत हिमाचली युवाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी विकसित कर रही है। हिमाचल अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदेश नहीं रहा, बल्कि निवेश की राष्ट्रीय दौड़ में भी अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने लगा है। नीति आयोग के पहले इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में हिमाचल प्रदेश ने पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल कर ये संकेत दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य निवेशकों के लिए भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन बड़े केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए 3030 करोड़ रुपए की एक नई योजना को मंजूरी की घोषणा की। इसके जरिए भारत को रसायन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में भारत औद्योगिक अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की विकास योजना रसायन भव्य रसायन को मंजूरी दी गई। ग्रामीण विकास विभाग ने नई दिल्ली के 1 जुलाई 2026 के आदेश के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आधिकारिक रूप से समाप्त करते हुए प्रदेश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी 1/2025 लागू कर दिया है। नए कानून की धारा 6(1) और 6(2) के तहत अब वित्त वर्ष में 60 दिनों के पीक कृषि सीजन के दौरान इस योजना के तहत कोई भी सरकारी कार्य नहीं होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य खेती के समय किसानों को आसानी से खेतिहर मजदूर उपलब्ध करवाना है, ताकि कृषि कार्य में कोई बाधा न आए। उपमंडल धीरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 11 और सहायिकाओं के 28 रिक्त पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इच्छुक पात्र उम्मीदवार सादे कागज पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापित प्रतियों के साथ अपने आवेदन 18 अगस्त 2026 तक जमा करवा सकते हैं। साक्षात्कार 21 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे उपमंडल अधिकारी कार्यालय धीरा में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उपमंडल पालमपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 16 एवं सहायिकाओं के 32 रिक्त पड़े पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरने के लिए भी पात्र महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पालमपुर उपमंडल के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जबकि साक्षात्कार 22 अगस्त 2026 को प्रातः 10 बजे उपमंडल अधिकारी कार्यालय पालमपुर में आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल ने आज श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री महाराजा रणवीर सिंह परिसर जम्मू तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शक्ति मीमांसा के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। संगोष्ठी का विषय 51 शक्तिपीठ भारतीय विरासत के आध्यात्मिक स्तंभ था। राज्यपाल ने कहा कि शक्ति केवल आराधना का विषय नहीं, बल्कि सृजन, ज्ञान, करुणा, साहस और राष्ट्र चेतना की शाश्वत ऊर्जा है। भारतीय दर्शन में शक्ति संपूर्ण सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। उनका कहना है कि शक्तिपीठ सदियों से भारत की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करते आए हैं और ये केवल पूजा अर्चना के स्थल नहीं, बल्कि भारतीय कला, स्थापत्य, साहित्य, संगीत और लोक परंपराओं के
महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा की टर्म परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आयोजित होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उपनिदेशकों को सूचना भेजी है। निर्देशों के अनुसार ये परीक्षाएं सीबीएसई के नवीनतम व स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप आयोजित की जाएंगी। ये व्यवस्था सीबीएसई परीक्षा उपविधियों के अध्याय 7-37(2) के अनुसार लागू होगी, जिसमें कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर आयोजित करने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किए गए नए संशोधनों को अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हिमाचल

श्रम संशोधन नियम 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि 11 जुलाई 2026 को प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों की प्रति सभी जिलों को भेज दी गई है। जिला उपनिदेशकों से कहा गया है कि वे इन संशोधित नियमों का अच्छी तरह अध्ययन कर और अपने अधीन आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, मुख्य अध्यापकों तथा खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
1: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: पर HIV कभी न दूं।
1: अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के ICTC में सलाह और HIV टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन

याद रखना, जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: अरे भैया, ये आप सबने हेलमेट क्यों पहना है? ये तो बाइक वाला हेलमेट है ना।
1: अब आप नहीं पहन रहे तो सोचा हम ही पहन लेते हैं।
2: असलियत में हेलमेट किसको शोभा देता है ये तो सबको पता है। बाइक चलाते वक्त सर बचाएं, हेलमेट पहने। वेयर अ हेलमेट ऑलवेज बिकॉज हेलमेट सेव्स।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मैं नहीं करूंगी आज की बात तुम्हारा कोई काम। क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
6: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
5: किससे?
6: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से दिन के साथ। जी दोस्तों, 26 जुलाई 2026 का दिन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो आज का दिन बहुत खास है आप सभी के लिए, आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और याद कर रहे हैं उन वीर सपूतों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी। दोस्तों, आज का दिन उस अदम्य साहस, शौर्य और अमर बलिदान का प्रतीक है जो हमारे जांबाज सैनिकों ने टाइगर हिल से लेकर तोलोलिंग की पहाड़ियों तक दिखाया था। और जब भी देश की रक्षा और कारगिल का जिक्र होता है, हमारी देवभूमि हिमाचल और हमारे अपने कांगड़ा धर्मशाला का सिर गर्व से और ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का वो ऐतिहासिक नारा, ये दिल मांगे मोर, आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देता है। उनके साथ साथ सूबेदार संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार और हमारे अनगिनत हिमाचली शूरवीरों की गाथाएं आज भी धर्मशाला की इन हवाओं में गूंजती हैं। तो आज का दिन उन सभी के लिए समर्पित। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है आज का, देशभक्ति से भरा और साथ ही बातचीत से भरा हुआ। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ।

दोस्तों, इस प्यारे से देशभक्ति गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जी दोस्तों, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफ़र आप सभी एंजॉय करने वाले हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और आज के इस खूबसूरत से दिन को और ज़्यादा प्यारा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपना योगदान, उन वीरों को याद करने का योगदान, उन्हें नमन करने का योगदान ज़रूर होना चाहिए। और आज का बहुत ही खास दिन भी है दोस्तों, क्योंकि जो छात्रों की मांग थी, जो कि दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, अपनी मांग को मतलब सवालों को प्रशासन तक पहुंचाने का, तो वो सफ़र उनका 36 दिनों का पूरा हुआ और उनकी मांगे जो हैं वो मान ली गई। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि रेजिग्नेशन की मांग की थी उन्होंने, और भी जो बच्चे जिन्होंने नीट पेपर लीक के वजह से जो है अपनी जान गंवाई, जिंदगी से वो जा चुके हैं ना, उनके फैमिली के लिए उन्होंने थोड़ा सा सहयोग मांगा था, और भी थी मांगे उनकी, तो वो उनकी मांगे जो हैं वो मतलब कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वो पूरी की जाएंगी। एक तो उन्हें मिल गई है रेजिग्नेशन वाली, बाकी समय के साथ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो उन बच्चों के संघर्ष का भी आज बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा दिन है दोस्तों। ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई पार्टी, ना कोई भेदभाव, ये जीत है उन बच्चों के संघर्ष की, और ख़ास करके सोनम सर के संघर्ष की, जिन्होंने अनशन किया बच्चों के भविष्य के लिए और उनकी मांग आज पूरी हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, इसी खास मौके पे एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: तो सब बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आज का ये देशभक्ति के लिए समर्पित, तो आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों और इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन 9:20 हुए हैं और अब समय है कुछ खास जानकारियों का, तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इन बहुत ही खास बातों और मनोरंजन के साथ।
1: बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को राष्ट्र कर रहा नमन, चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे मेले का विधिवत शुभारंभ और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, मौसम विभाग ने 28 जुलाई से मॉनसून के रफ्तार पकड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और कदाचार पर कड़ी सजा सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनका मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित।
1: कारगिल विजय दिवस आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। इस अभियान के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में उन क्षेत्रों को वापस हासिल किया था जिन पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता इस 8 दिवसीय मेले का शुभारंभ करेंगे। ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिर्जा परिवार की ओर से तैयार मिंजर को राज्यपाल मंदिर में अर्पित करने के बाद शोभा यात्रा भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचेगी और मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इस बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता व सहायता शिविर भी लगाया जाएगा।
3: मिंजर महोत्सव जो है 26 तारीख से 2 तारीख तक मनाया जा रहा है। गवर्नर साहब इनॉग्रेट करेंगे और इसकी क्लोजिंग TM साहब 2 तारीख को करेंगे। हमारी दोनों समय शुरुआत में और आखिर में शोभा यात्रा होती है, लेकिन हम एक SHG मेला करवा रहे हैं जिसमें हमारे लगभग 16 स्टॉल जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लगेंगे और वो अपने जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कलाकृतियां हैं, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको वहाँ पे प्रदर्शित करेंगे।
1: वहीं पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि मेले को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
3: इस बार हमें जो 650 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड है टोटल इंक्लूडिंग होमगार्ड्स। हमने पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम से देखते हुए जवान जो भी मिंजर मेला को चार भागों में विभाजित किया है और उसमें हमारे अधिकारी भी तैनात है वहाँ। और इसके अलावा भी हमने एक एंटी ईव टीचिंग महिलाओं के एक स्क्वाड बनाया हुआ है सीक्रेटली ऑपरेट करेगा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो ने शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3,00,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा भी किया। लाहौल स्पीति जिले में स्पीति मैराथन 2026 का आयोजन 28 व 30 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें देश व विदेश के धावक हिमालय की चुनौतीपूर्ण वादियों में अपनी प्रतिभा और साहस का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सेना की पहल से आयोजित ये प्रतियोगिता खेल के साथ साथ स्पीति की प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटन और हिमालयी संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर भी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: लाहौल स्पीति एक बार फिर खेल, पर्यटन और रोमांच का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। स्पीति मैराथन 2026 का आयोजन 28 और 30 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के धावक हिमालय की चुनौतीपूर्ण वादियों में अपनी प्रतिभा और साहस का प्रदर्शन करेंगे। मैराथन की शुरुआत 28 अगस्त को 77 किलोमीटर के कुंजम ला चैलेंज से होगी। इसके बाद 30 अगस्त को 42.195 किलोमीटर फुल मैराथन, 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रन आयोजित की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आयोजकों ने अधिक से अधिक प्रतिभागियों से इस अनूठे आयोजन का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ आज शिमला के चौड़ा मैदान में विरोध रैली करेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ की कल सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक असफल होने पर संघ ने ये निर्णय लिया है। शिक्षक संघ ने सरकार की ओर से न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम में संशोधन के लिए कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अधिसूचना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग दोहराई। संघ ने रैली के बाद मांगे न माने जाने तक स्कूल शिक्षा निदेशालय परिसर में क्रमिक अनशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, शिमला, मंडी और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक 134 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, वहीं 78 ट्रांसफार्मर और 35 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। इधर विभाग ने 28 से 30 जुलाई तक मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई है, जिसके तहत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने हाईकोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, हिमाचल में बीएड काउंसलिंग पर रोक से इनकार। हिमाचल दस्तक लिखता है, सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आह्वान पर राजनीतिक दलों ने निकाला कैंडल जुलूस। पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष 4,000 पद भरे जाएंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, इंस्पेक्टर मनाते रहे मौज, टिकट काट खुद निरीक्षण करते रहे परिचालक। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, चंबा में आज से सजेगा अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मंडी धर्मपुर हाईवे समेत 134 सड़कें अब भी ठप, 28 तक बारिश के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। सरकार कल लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 करेगी पेश। कारगिल विजय दिवस पर आज देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को राष्ट्र कर रहा नमन। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय 8 दिवसीय मिंजर मेला आज से शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे मेले का विधिवत शुभारंभ। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।

दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा सा दिन दोस्तों, 26 जुलाई, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि भारत के उन वीर सपूतों के शौर्य, बलिदान और अमर राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है, जिन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारत के स्वाभिमान तिरंगे को शान से लहराया था। आज कारगिल विजय दिवस के इस पावन अवसर पर हम नमन करते हैं उन वीर नायकों को, जिन्होंने देश की सीमा के खातिर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। या तो मैं लहराता हुआ तिरंगा वापस लेकर आऊंगा, या तो मैं लहराता हुआ तिरंगा वापस लेकर आऊंगा, या फिर उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। आइए दोस्तों, इन्हीं प्यारे से शब्दों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा देशभक्ति गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और आज के इस प्यारे से कार्यक्रम में आप सभी जुड़े हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम में अपनी बातचीत का रुख करते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम की अपडेट क्या कहती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज वर्षा का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 जुलाई के लिए राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, 26 और 27 जुलाई के लिए भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और भूस्खलन तथा फ्लैश फ्लड के आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में शनिवार को भी बारिश हुई, वहीं कई स्थानों पर बादल छाए हैं। जी दोस्तों, 26 जुलाई यानी कि आज की हम बात करें तो कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल दोस्तों, 29 जुलाई तक बारिश की जो है वो चेतावनी जताई गई है। तो ऐसे में हमें बहुत ही सतर्क और बहुत ही सावधान नदी नालों के पास जाने से बचना है ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़े। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों 1999 का वो युद्ध जब दुश्मन ने धोखे से हमारी चोटियों पर कब्जा जमाया था, तब हमारी थल सेना और वायुसेना ने जो अदम्य साहस दिखाया उसने इतिहास रच दिया। आज इस विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जय हिंद की सेना में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पर्दे पर उकेरी गई सेना की कहानियों की, असली युद्ध नायकों के जज्बे और विशेषकर वीरभूमि हिमाचल प्रदेश का कारगिल युद्ध में अतुलनीय योगदान की। बिल्कुल, सभी श्रोताओं को कारगिल विजय दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, और हमारे अमर शहीदों को शत शत नमन। किसी ने क्या खूब कहा है कि सीमा पर खड़ा फौजी ही नहीं, हर वो व्यक्ति राष्ट्रभक्त है जो अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और ईमानदारी से करता है। दोस्तों, जब हम घर में चैन से सो रहे होते हैं तो सीमा पर हमारे जवान गोलियों का सामना कर रहे होते हैं। इस जज्बे को भारतीय सिनेमा ने बड़े पर्दे पर हमेशा जीवंत किया है। जेपी दत्ता जी की फिल्मों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारगिल युद्ध की हम बात करें तो कारगिल युद्ध में भारत की विजय ये वो यादगार पल है जिसका गौरव महसूस करना हर भारतीय का कर्तव्य है। प्रसिद्ध निर्देशक जेपी दत्ता मानते हैं कि युद्ध नायकों की कहानियां पर्दे पर बार बार आनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी फिल्में नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावना को मजबूत करती हैं।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की बुनियादी पढ़ने लिखने तथा गणितीय क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने देगी संस्थान डिग्रिटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल लखनऊ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अल्फा प्रोग्राम को पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू करने का फैसला लिया है। जी दोस्तों, एक्सीलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल यानी कि अल्फा। सरकार का दावा है कि इस कार्यक्रम से बच्चों को सीखने के स्तर में तेजी से सुधार होगा और कक्षा के अनुरूप दक्षताओं को हासिल करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अल्फा शिक्षण पद्धति को पहले शिमला और सोलन के कुछ शिक्षा खंडों में पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया था। वहां इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और बच्चों के सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया और इसी सफलता को देखते हुए अब ये कार्यक्रम विस्तार जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम का रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, युद्ध के नायकों और जितनी भी फिल्में बनाई जा सकती हैं बननी चाहिए। लोगों को समझ आना चाहिए कि जीत हमेशा एक कीमत पर मिलती है। जवान हमारे परिवारों की रक्षा के लिए अपने परिवारों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर फिल्मों में देशभक्ति को बढ़ाने और लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बॉर्डर और LOC कारगिल जैसी फिल्मों ने हर भारतीय के दिल में सेना के प्रति सम्मान को कई गुना बढ़ा दिया है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

बिल्कुल दोस्तों, देश के प्रति जज्बा और जुनून होना चाहिए, फिर चाहे अपने अधिकार हो, चाहे अपनी लड़ाई हो, पूरे जोर शोर के साथ हम उसे लड़ सकते हैं और ज़िंदगी में सफलता को हासिल कर सकते हैं। और आज के युवा वाकई में जागरूक हैं, वाकई में समझदार हैं, अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, ये इस आंदोलन ने साबित कर दिया है। और वाकई में दोस्तों, ये बातें सिर्फ जुबानी रह जाती हैं, सिर्फ कहते हैं ना कि जो हमें सुना सुनाया जाता है बस वहीं तक सीमित रह जाती है, और सुनाने में न जाने किस तरह से सुनाया जाए, लेकिन आंखों देखी बातें इतिहास में जब छप जाती हैं तो वो एक हमारे लिए प्रेरणा बनती हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती हैं। उसी तरह से जिन बच्चों ने लाठियाँ खाई, जिन बच्चों ने अंत तक संघर्ष किया, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनके जज्बे को भी सलाम होना चाहिए जो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ आइए और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और जानकारियों की ओर जो है वो हम रुख करते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जिनकी भर्ती 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के विरुद्ध हुई थी, लेकिन नियुक्ति बाद में होने के कारण वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में आ गए। वित्त पेंशन विभाग ने 9 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों को एक मुश्त अवसर देते हुए पुरानी पेंशन योजना यानी CCS पेंशन नियम 1972 के तहत आने का विकल्प देने का निर्णय लिया है। पात्र कर्मचारी 31 अक्टूबर 2026 तक ये विकल्प भर सकेंगे। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और उसके बाद कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी है आप सभी के लिए जो कि लाभ पात्र हैं, तो जरूर इस पहल में आगे बढ़िए जो है, मतलब इसकी पात्रता के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही खास जानकारी दोस्तों गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई गई है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

जब भी देश की सीमाओं की सुरक्षा और बलिदान की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। हिमाचल को यूं ही देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि नहीं कहा जाता। कारगिल युद्ध में भी हिमाचल के वीरों ने अपनी वीरता का अद्भुत मिसाल पेश की थी। बिल्कुल, कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 527 वीर जवानों में से अकेले हिमाचल प्रदेश के 52 सूरमा थे और इनमें से सबसे अधिक शहादत जिला कांगड़ा के सपूतों ने दी थी। कारगिल युद्ध में दिए गए कुल 4 परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान में से 2 परमवीर चक्र अकेले हिमाचल प्रदेश की माटी के लालों को मिले थे। तो आइए दोस्तों, उन्हीं गर्वान्वित शब्दों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम में एक और बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा देशभक्ति गीत।

जी हाँ दोस्तों, और जब कांगड़ा की बात आती है तो दिल गर्व से भर जाता है। पालमपुर जिला कांगड़ा के कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनका ये दिल मांगे मोर का नारा आज भी देश के हर युवा की धड़कन में गूंजता है। उन्होंने पॉइंट 5,144 और पॉइंट 4,875 पर विजय प्राप्त करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कांगड़ा की इस पावन माटी ने देश को एक और परमवीर दिया। 1947 के भारत पाक युद्ध में देश का पहला परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा भी जिला कांगड़ा पालमपुर से ही थे, और कारगिल युद्ध में भी कांगड़ा के कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ साथ विलासपुर के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र मिला। कांगड़ा के कई अन्य वीर सपूतों जैसे कैप्टन सुधीर फालिया, अशोक चक्र और कांगड़ा के दर्जनों जांबाज जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कांगड़ा की माटी की ये रीत पुरानी है, कांगड़ा की माटी की ये रीत पुरानी है, देश के खातिर हंसते हंसते जान लुटाने की कहानी है।

0: ट्यून किया है 91.9 ओमेगा हर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। 26 जुलाई 2026 का दिन है, कारगिल दिवस जो है आज आप सभी मना रहे हैं। जी दोस्तों, कारगिल युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच भी लड़ा गया था। भारतीय वायुसेना का ऐतिहासिक युद्ध अभियान ऑपरेशन सफेद सागर, जिसने इस विजय में निर्णायक भूमिका निभाई। वायुसेना का योगदान अविस्मरणीय था। इसमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बलिदान को दर्शाया गया है। इसका एक संवाद युवाओं के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाता है। अब या तो हम इतिहास रचेंगे या इतिहास बन जाएंगे। जब वायु सैनिक 30,000 फीट की ऊंचाई से ये संवाद बोलते हैं तो उस देशभक्ति की भावना साफ झलकती है।
1: जंग तो चंद्रा

तो सुहा थी प्यारा सा ये देशभक्ति गीत आप सभी ने सुना अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो हर जिंदगी में जंग तो हर किसी से लगती ही रहती है, ये तो देश की बात है, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर जंग जो है हमें दिखती है आपस में वैर भाव से। तो वो जंग बातों से निपटाई जा सकती है, उसके लिए ज़्यादा बातें बढ़ानी नहीं चाहिए। फिलहाल आई दोस्तों इसी के साथ जो है वो जानकारियों की ओर रुख करते हैं। नगरोटा बगमा में स्वर्गीय जीएस पाली बाल मेले के दूसरे दिन राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगमा में मेगा रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा और चंबा के विधायक नीरज नैयर द्वारा किया गया। सभी ने साक्षात्कार लेने आई हुई कंपनियों के अधिकारियों और साक्षात्कार देने आए हुए बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान स्थानीय विधायक एवं मेले के संरक्षक आरएस बाली ने कहा कि किन विकास पुरुष बाली ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई को निरंतर लड़ा और उन्हें रोजगार दिलाने के कार्य को सर्वोपरि रखा। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने की मुहिम को बड़े स्तर पर लड़ा। उनका कहना है कि बाल मेले के अवसर पर हर वर्ष मेगा रोजगार मेले का आयोजन होता है, जो युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा अवसर रहता है। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आरजू मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत उदित नारायण अनु मलिक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से इस बहुत ही खास अवसर कारगिल दिवस पे। दोस्तों एक फौजी की वर्दी पहनकर अभिनय करना और वास्तव में रणभूमि में खड़े होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल और शेरशाह जो कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, इनमें कलाकारों ने स्वीकार किया कि शूटिंग के दौरान रीटेक होता है लेकिन असली युद्ध में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, वहां जीवन दांव पर होता है। शहादत के पल में जो गौरव छिपा होता है वो दुनिया के किसी भी मुकाम से बड़ा होता है।

दोस्तों रिटेक फिल्मों में होता है, रणभूमि में केवल एक मौका होता है भारत माँ की रक्षा का। आज कारगिल विजय दिवस के इस विशेष सफर में हमने समझा कि क्यों जय हिंद की सेना और हमारी वीरभूमि के ये नायक हमारी शान, हमारी पहचान और हमारा अभिमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलस्तां हमारा। जी दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि आइए आज के दिन हम कांगड़ा, हिमाचल और पूरे भारत के उन वीर शहीदों और उनके परिवारों को नमन करें जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। जी दोस्तों, उन्हीं की याद में, उन्हीं के नमन में ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

सच्ची दोस्तों, जिन वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो उनका ये एक मैसेज कि अब वतन जो है, जो देश के युवा हैं, जो वीर हैं, उनके हाथों में है। तो ये जो है ना दोस्तों, बात आज के जेंजीज ने साबित कर दी है कि जब हम एकजुट हो जाते हैं, जब वाकई में हम देश के हित के लिए लड़ते हैं, तो कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता, कोई भी सफ़र जो है वो मुश्किल नहीं होता। लेकिन हम जब अहंकार के साथ आगे बढ़ते हैं, सिर्फ मैं के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मुश्किलें तो क्या दोस्तों, कोई भी मंजिल एक मुमकिन से नहीं होती, मतलब बहुत ही मुश्किलों से भरी होती है, और उसे हासिल कर भी लेंगे लेकिन वो सुकून और वो जज्बा उसमें नहीं दिखेगा। तो इसलिए एकजुट होना, एकजुट होकर आगे बढ़ना, देश का नाम गौरव करना गर्व की बात है। तो ये आज के इन जेंजेस ने प्रूफ कर दी है बात दोस्तों, हर एक बेड़ी को मिटा दिया है, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वो पार्टी के नाम पे, चाहे वो जाति के नाम पे, चाहे वो किसी भी भेदभाव के नाम पे। तो आज वो ये मैसेज उन्होंने पूरे देश को दिया है कि हम एकजुट हैं, एक हैं, कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। तो हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वैर भाव के, क्योंकि जिंदगी में अपना है, अपनापन है तो सब कुछ है, अपनापन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जाते जाते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन वीर शहीदों को जो है वो नमन, सभी पूरे देश की तरफ से, पूरे एक एक व्यक्ति की तरफ से। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गुण।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: उदित, पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई, लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही होगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं, मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूबी बाजा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए। वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठे
1: हैं? तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता है, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे, इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।
8: गजब टूटी बाजा।

एक और खूबसूरत दिन है और वीकेंड क्लासिक रेडियो शो लेकर के मैं रुचि एक बार फिर से आपके साथ हूँ। इस हफ्ते आज के इस एपिसोड में जिनकी हम बात करने वाले हैं, उनका टाइम स्पैन बॉलीवुड में चाहे थोड़ा कम रहा हो, लेकिन जितने टाइम के लिए वो रही इस इंडस्ट्री में, तब तक काफी चर्चों में रही। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस लीना चंदवरकर जी की। बचपन से ही लीना जी को एक्ट्रेस बनने का बड़ा शौक था, इतना ज्यादा कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी स्कूल टीचर ने उन्हें जोरदार पनिश कर दिया था। ऐसा क्या एतराज था लीना जी की स्कूल टीचर को उनकी एक्ट्रेस बनने से, जानेंगे बस कुछ ही देर के बाद। अभी के लिए हम सुनते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से गाना इतना तो याद है मुझे। ये फिल्म लीना जी के करियर में उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट रही थी। सुनिए ये गाना और सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज द वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल बट येट द वेरी ब्यूटिफुल एक्ट्रेस लीना चंदवरकर जी की। इनके बचपन में ही इन्हें फिल्मों से बड़ा लगाव हो गया था, एक शौक जो था कि एक्ट्रेस बनूंगी मैं बड़े होकर के, ये इनके बचपन में ही इन पर चढ़ गया था। इनफैक्ट ये अपने स्कूल में भी अपने सभी दोस्तों को ऑडियंस बना करके कुछ फिल्मी सीन्स जो है वो उनके सामने दोहराया करती थी। एक बार कुछ अजनबियों के सामने भी इसी हरकत को दोहराते हुए, ऐसे ही कुछ फिल्मी सीन्स इनैक्ट करते हुए लीना जी की टीचर ने उन्हें देख लिया था और बड़ा गुस्सा हुई थी लीना जी पर, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद लीना जी कुछ गलत लोगों की कंपनी में ना चली जाएं और लोग उनका फायदा ना उठा लें। वैसे अपने घर वालों के लाड़ प्यार ने लीना जी को काफी जिद्दी भी बना दिया था। कोई चीज अगर उन्हें नहीं मिलती थी तो वो सारा घर अपने सर पर उठा लेती थी और धमकी देकर उन्हें पूरा करवा ही लेती थी। ऐसी ही एक जिद की वजह से लीना के पापा ने उन पर जिंदगी में पहली और आखिरी बार हाथ उठाया था। आखिर ऐसी क्या जिद थी लीना जी की जो उनके पापा को मजबूर कर दिया कि वो अपनी लाडली पर हाथ उठाएं? उसके पहले सुनिए अगला गाना लीना जी की ही एक फिल्म से, वीकेंड क्लासिक रेडियो।

बेटियां अपने पापा की सबसे लाडली होती हैं, और लीना जी सिर्फ अपने पापा की ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार की लाडली थी। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज के ये आप जितने भी बेहतरीन गाने सुन रहे हैं वो मैं आपको अपने डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से सुना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहे हो। वैसे लीना जी की जिंदगी के बारे में कुछ आगे बढ़ते हुए बताती हूँ आपको। सिर्फ एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार लीना जी के पापा ने उन पर हाथ उठाया था, और वो क्यों? क्योंकि लीना जी ने अपना SSC का एग्जाम देने से इनकार कर दिया था। उन्हें फिल्म टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था जो कि उसी समय पर हो रहा था। ये बात लीना जी के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ दे दिया था लीना जी को। लेकिन ऐसा करने पर लीना के पापा को बहुत दुख हुआ, और लीना जी के दादाजी ने उन्हें कन्विंस भी कर लिया कि वो लीना जी को जाने दें इस फिल्म टैलेंट कॉन्टेस्ट में। अब उसके बाद क्या हुआ ये तो सभी लोग जानते ही हैं। अपना सपना लीना जी ने पूरा किया, फिल्मों में आई और एक कामयाब एक्ट्रेस भी बनी। एक तरफ जहां उन्होंने अपना ये फिल्मी करियर बनाने का सपना पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में वो डिप्रेशन में और गहरी चली जाती जा रही थी। क्या थी उनके डिप्रेशन की वजह और किसने सहारा दिया उन्हें, जानेंगे बस कुछ ही देर के बाद। तब तक सुनिए अगला गाना, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। सारे

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम लीना चंदवरकर जी की जिंदगी के कुछ पन्नों को पलट रहे हैं। यहाँ पर जब हमारा कोई सपना काफी मेहनत करने के बाद पूरा हो तो उसे जी भर के सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कुछ सपने पूरे करते करते ही कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ लीना जी के साथ भी। क्या आप जानते हैं कि लीना जी ने अपने करियर के पीक पॉइंट पर अपने भाई को, जो कि सबसे चहीते थे उनके, उन्हें खो दिया था। इनफैक्ट इनके भाई के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, लीना जी के भाई उन्हें शूट पर कभी भी अकेला नहीं जाने देते थे। एक आईटी में रैंक होल्डर होने के बावजूद उन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की, बल्कि दिन रात वो लीना जी के साथ ही रहते थे, क्योंकि वो डरते थे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहकर उनकी बहन किसी के जाल में फंस ना जाए, कोई उनका फायदा ना उठा ले। लीना जी के भाई एक रफ पैच से गुजर रहे थे, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए वो नहीं रहे। और लीना जी के भाई, जो कि सबसे ज़्यादा बड़े सपोर्ट थे उनकी ज़िंदगी में, उन्हें खो देने के बाद में लीना जी ने अपने पति को भी एक एक्सीडेंट में खो दिया था। इन सभी चीज़ों से बाहर निकल पाना उनके लिए नामुमकिन सा था, लेकिन फिर आए उनकी ज़िंदगी में किशोर कुमार, जिन्होंने उन्हें संभाला। लीना जी को संभालते संभालते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। किशोर जी की ये चौथी शादी थी और लीना जी की दूसरी शादी थी। लेकिन क्या आपको पता है, किशोर कुमार और लीना जी ने भी एक दूसरे से दो बार शादी की थी। आखिर ऐसा क्यों, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के।

0: बाद, लेकिन उसके पहले अगला गाना गम का फसाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मेरे यानी रुचि के साथ।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, महबूब की मेहंदी ये गाना सुना आपने। आज जिन कलाकार की हम बात कर रहे हैं वो सिंगर किशोर कुमार की चौथी और आखिरी बीवी लीना चंदवरकर जी हैं। लीना जी ने किशोर दा से अपनी दूसरी शादी की थी, लेकिन लीना जी के पापा को बिल्कुल ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है किशोर कुमार पहले ही 3 शादियां कर चुके थे। काफी समझाने के बाद आखिर वो राजी हुए इस रिश्ते के लिए और किशोरदा और लीना जी ने कोर्ट मैरिज कर ली। फिर लेकिन लीना जी की मम्मी सामने आई और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कोर्ट मैरिज से खुश नहीं है, उनका मानना था कि जब तक एक जोड़ा अग्नि के सामने फेरे नहीं ले लेता तब तक उन्हें साथी नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने इंसिस्ट किया कि दोबारा शादी की जाए किशोरदा और लीना जी के बीच में, लेकिन तब तक लीना जी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने सर्वेंट्स को, घर पे काम करने वालों को, सभी को छुट्टी दे दी और घर के ही अंदर उन्होंने शादी की। पूजा के बीच बीच में उन्हें ब्रेक भी लेना पड़ रहा था बार बार रेस्ट करने के लिए। एक शॉर्ट फेरी टेल जैसी लाइफ रही है लीना चंदवरकर जी की। दोनों की शादी काफी कम समय तक के लिए रही, लेकिन दोनों का प्यार का किस्सा जो है वो अभी तक भी जवां है। सुनाती हूँ आपको और कुछ बेहतरीन गाने लीना जी के ही, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दूं कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विनोद मेहरा जी की जिंदगी के बारे में। रेखा जी के साथ इनकी दोस्ती, इनका किस्सा जो है वो तो मशहूर है ही, लेकिन क्या आप जानते हैं विनोद मेहरा जी ने एक को स्टार से चोरी छुपे शादी कर ली थी। कौन थी ये जानेंगे आप अगले एपिसोड में। फिलहाल सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान

0: चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: संबोधन के समापन में श्री मोदी ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ

0: फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों बैठा है?
1: तुझे उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना मुझे टीबी है।
2: चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है। तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
5: तो फिर ये ड्रेसिंग टेबल के कपड़े के नीचे 5,000 किसने रखा? मेरा ही रहेगा लगता, रख के भूल जाऊंगा ना। अब तुमने तो कसम खाई है, तुम्हारे तो है नहीं। मेरे ही होंगे इस घर में और रहते ही कौन है।
7: भारी मिस्टेक हो गया सर।
6: नहीं मतलब तुम्हारे ही होंगे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों, मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

कार्यक्रम का अगला पंजाबी गीत।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान ना पैसे का है, ना कपड़े का है, ना किसी चीज सामान का है। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप अपनी एक बात देकर के उसको खुश कर दो। आप उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाओ और आप ऐसा कुछ कर दो जो उसके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वो आपको देख करके कुछ समय के लिए भूल जाए कि वो कितना दुखी है।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: पवन आ गया।
2: पवन वहाँ क्यों
1: बैठा है? पता नहीं, उसे टीबी है।
2: और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले।
3: पता है ना, मुझे टीबी है।
2: चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी के दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा?
4: अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें।
5: सुनो, तुम्हारे पास 5,000 रुपए पड़े हैं?
6: 5,000? मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तुम 5,000 पूछ रहे हो?
5: Oh, no. देख लो, कहीं थोड़े बहुत पड़े हो।
6: तुमने दिए कभी जो थोड़े बहुत कहीं पड़े होंगे?
5: किचन के किसी डब्बे वब्बे में छुपाए हो या किसी कपड़े के नीचे?
6: तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे पैसे छुपाती हूँ? अरे नहीं है यार मेरे पास पैसे।
5: कसम खाओ।
6: कसम से मेरे पास 1 रुपए।

नमस्ते नमस्कार, कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर ये है तुहां सारे अंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक तशुतों तुहां सारे अंदा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफरच शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कन्ने आजकना जेड़ा दिन ने सेहां वास्ते कयो खास है तो जरूर आजकने जेड़ा दिने दी खासियत है, आजकना जेड़ा दिने दा पन्न है या जुलाई दा जेड़ा ए 26 तारीख वाला ये दिन कयो खास है तो जरूर इस दिने दी जेड़ा खासियत है से जरूर तुहां तक पहुँचानी है। आज जेड़ा अहां खास दिन बना देन, पहले तो जितने भी जेड़ा शहीद हैं, शहीद जवान हैं, तिना जो सलाम है, क्योंकि तिना जो सलाम इसी वास्ते है कि हाँ जड़े से चैन दी नींद ले करी अपने घर है जड़े से, तिना जो सलाम इसी वास्ते है कि हाँ जड़े से चैन दी नींद ले करी अपने घर है जड़े से सो देन करे से देश दी जड़ा रक्षा है से जरूर करा देन। दर्शकों 26 जुलाई 2026 दी अहां गल करिए ता आज अहां जेड़ा खास दिवस बना देन से बना देन कारगिल विजय दिवस

दर्शकों तो सारे सुनिया ये गीत ये शुरुआत गलबात अह करा दी ने कारगिल विजय दिवस के बारे च। दर्शकों तो उन वीर जो जेड़ा सत सत नमन ने वतन दी राह पर मुस्कुराई करी अपनी जेड़ा जान है सदेगे तिरंगे दी शान जेड़े से अपने वास्ते बनाई करी के हर तिरंगे दी जेड़ा शान है जितने भी शहीद हैं तिना जो शत शत नमन है। इसी करने जेड़ा वीर जवान हैं जेड़ा वीर शहीद हैं तिना जो सत नमन है कने जेड़ा भारत माँ वास्ते अपना जेड़ा भारत माँ वास्ते अमर होई करी के तो ज़रूर आज यहाँ जेड़ा खास दिवस बना देन से बना देन कारगिल विजय दिवस 26 दे इस इतिहास जिड़े से पन्ना दर्ज हुई था। कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कने यहाँ कन्ने गल बात जिड़े से जरूर करी सकते। साल 1999 दी गल करिए ता आज कने ही दिन जिड़े से जितने भी जावाज जवान ऑपरेशन विजय दे तहत जिड़े से पाकिस्तानी जिड़ा घुसपैठ होया था तिस जिड़े से बर्फीली चोटियां पर जिड़े से तिरंगा जिड़े से फहराया था। तो आज कने जिड़ा दिने दी खासियत है से ज़रूर तुह सुनी ले होनी है कने तुह भी इस दिन जो ज़रूर सेलिब्रेट भी करा दे उन्हें न कने जितने भी शहीद जवान हैं तिना जो सत सत नमन ज़रूर करा दे उन्हें न क्योंकि जिंदगी दा जिड़ा सफ़र है ना से हर पन्ने च दर्ज होई करी जानते है। आज कने दिने दी क्या खासियत है आज कना जिड़ा दिन है सियाह वास्ते कयो खास है से ज़रूर दिने दी खासियत अहां तुहां तक पहुँचाई थी है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र जहाँ कने जुड़ी सकते कने अहां कने गल बात जिड़े से ज़रूर करी सकते। इसी गल बात कने अहां अग्गे बढ़ते न कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न ये फरमाइश अहां तक पहुँची हुए फेसबुक के माध्यम ने तिना तक कहाँ ये गीत पहुँचाने तिना दा नाव है रवि कुमार जी। ज़रूर तिना तक ये गीत अहाँ पहुँचा देना तुह सारे भी इंजॉय करा।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते इसी गीत संगीत कने फरमाइश कने फिर ते वापिस तो तक गल बात करना पूछिए ने तो हाँ सारे भी बिल्कुल अपनी रेडियो सेट जेड़ा से ऑन कित होना है या मोबाइल फोन च सुना दे उन्हें क्योंकि इंतजार तो जो रहता है कने अजगना जेड़ा दिन ने से जरूर कुछ खास है तो हाँ सारे भी अजकने जेड़ा दिने दी खासियत है से गल बात अहां करने जरूर सांझा करी सकते। वैसे तो श्रोताओं गल करिए अजकने दिने दा जेड़ा इतिहास है हर पन्ने च कुछ ना कुछ नया जेड़ा है से अहां जो दिखते भी हैं पढ़ते भी हैं कने अपनी जिंदगी दा भी अहां दी जिंदगी जेड़ा है ना सभी एक किताब ही है हर दिन अहाँ अपने किताब दे पन्ने जो पलट देना तब कुछ ना कुछ अहाँ अनुभव भी लैन देना कुछ सीखते भी हैं असफल भी होते हैं पर से अहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस प्रकार अपना जेड़ा इतिहास है उस जो सफलता दी ओर ले करी जाते हैं तो अजकना जेड़ा इतिहास है अजकना जेड़ा पन्ना है सभी कुछ अहाँ जो इस तरीके ने ही दसता है कि जेड़ा सलाम अहाँ करते हैं जेड़ा कैप्टन विक्रम भद्रा है तिना जेड़ा है से अपना जेड़ा झंडा है तिरंगा झंडा है से जरूर बर्फीली जेड़ा चोटियां ने तिथु फहराया था। इसी कन्ने जेड़ा साल 1856 की गल करिए अजकने दिने ही समाज जेड़ा समाज सुधारक ईश्वर चंद्र जेड़ा न विद्यासागर तिना हिंदू विधवा जेड़ा पुनः विवाह कानून जेड़ा से लागू कित्या था कने समाज जेड़ा एक नई दिशा जेड़ा से जरूर रखी थी। तो श्रोताओं हर दिने दी अपनी खासियत होती कने अहां किस प्रकार अजकने जेड़ा

दिने दा पन्ने या तिस जो किस प्रकार रखा देन या किस प्रकार अहाँ समझा देन से यहाँ पर निर्भर करता है। कनेसी कन्या अहाँ फिर ते आगे बढ़ना है कने अगली जेड़ा फरमाइश है, क्योंकि तो सारे जो पता है कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है, तो फरमाइशा भी जरूर तुह तक पहुँचा देन। ये फरमाइश जरूर थोड़ा दिया मोबाइल फोन की ओर नज़र दौड़ाई लिए, क्योंकि नज़र तो हर जगह दौड़ाना पौंदी है, चाहे मोबाइल फोन है चाहे टाइम है, हर जगह नज़र रखना जरूरी है। तो ये मैसेज अहाँ तक पहुँचा है व्हाट्सएप के माध्यम ने, कने तिना दा से रहने वाले न त्रिपुरा ते जिहड़े से ये कार्यक्रम सुना दे न, कने तिना दा मैसेज भी है कि जितने भी कार्यक्रम मन से अहाँ जो अच्छे लगते तो ज़रूर तिना तक कहाँ आए तिना दी फरमाइश पहुँचानी है, तो हाँ सारे भी इंजॉय करा।

0: सरसों तो हम सारे ही सुनिया है प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश इसा फरमाइशा कन्या हाँ फिरी ते वापिस आई उन अपनी गलबात उपर कने मेरी गलबात कन्ने तो हाँ सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कने ढेर सारिया जेड़ा गला बात न से करी सकते तहाँ दे जेड़ा एक श्रोता न से जुड़ चुके हैं न करते हैं तिना करने कल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते शशि जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: धन्यवाद जी, बिल्कुल जी ठीक ठाक जी, तुम्हारी आवाज सुन ली थी बिल्कुल ठीक ठाक
0: जी जी हाँ तो बड़ी अच्छी गल है जी, आवाज़ सुनना भी जरूरी है ना जी।
1: जी जी बिल्कुल जी, जी।
0: थोड़े थोड़े टाइम बाद सारे की आवाज़ तो हाँ सुन दे न।
1: हाँ जी
0: जी, तो रेडियो रोज ही सुन दे तो हाँ ना जी।
1: हाँ जी बिल्कुल जी
0: जी, तो आज ठीक है कि रेडियो सुनने दे क्या फायदे तो हैं लगते कने क्या रेडियो ते तो हैं क्या मतलब अच्छा लगता कि तो हाँ रेडियो सुनना जेड़े से ज़्यादा पसंद करते।
1: रेडियो तो मैं बचपने से सुन दिया है, तो नहीं तो दस साल पहले भी।
0: जी जी
1: रेडियो से तो अपना मन लगी रहता ना, जिया मर्जी करना ना, हाँ बट बंदा डीमोटिवेट भी नहीं होता कभी भी।
0: जी जी
1: है ना, रेस्टलेस रहता, टेंशन फ्री रहता, बंदा नई नई जानकारियां मिली जी, टेस्ट क्या होता हर चीज का, मतलब कहना जेड़ा इस रेडियो जेड़ी होंगी बिलकुल सही खबर होंगी, इस कोई खबर गलत नहीं होंगी, सबसे बड़ी गल।
0: जी कई बार अपना फालतू दा जेड़ा दिमाग लगांदे ना सभी नहीं लगाई पांदे ने फिरी ना जी, क्योंकि हां जो पता है कि रेडियो चल रहा है अपना काम चल रहा है तहां अपने काम च बिजी होंदे ना जी।
1: जी बिल्कुल जी,
0: जी कने आज जहां जेड़ा खास दिवस बना देन से बना देन कारगिल विजय दिवस ना जी।
1: जी जी
0: जी, क्योंकि तो जो पता है कि हर दिन दी अपनी खासियत होंदी, हर दिन आहां वास्ते खास होंदा ना जी,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि
1: पर वैसे आज से ना दो दिन ना, एक मैंग्रोव दिवस भी है ना आज।
0: जी जी जी जी
1: आज जी
0: जी, ता जेड़ा कारगिल विजय दिवस जेड़ा है से आज हाँ बना देन कि जेड़ा तिरंगा है ना हंदा जेड़ा चोटियां पर फहराया था आज के दिन कने जितने भी शहीद हैं तिना जो तहां जो हमेशा नमन करना चाहिए था ना, क्योंकि इस टाइम हाँ सुरक्षित हैं तो तिना दिया वजह ने ना।
1: बिल्कुल जी, से आप अपने थू लड़ाई कर रहे था, आहा अपने आराम में बैठे हो, जो आहा टेंशन फ्री हो के जी, तो बेचारे कितने चाहे धूप हो गर्मी हो बरखा हो जिस कुछ भी होती ना, तो बेचारे डटे रहना होती।
0: जी जी
1: उन्हें जो तहाड़े वास्ते स्ट्रगल कर रहे
0: जी, तहां जो यही है कि उन्हें दा मान सम्मान भी करना चाहिए ना जी।
1: बिल्कुल जी,
0: क्योंकि हर टाइम से चाहे कुछ भी अपनी ड्यूटी दे देना दे देना अहां दी रक्षा करा दे, देश दी रक्षा करा दे ना जी।
1: जी बिल्कुल जी
0: जी, तो तुहें क्या लगता किस प्रकार अहां जो तिना दा मान सम्मान करना चाहिदा या तिना जो जितने भी शहीद होयो ना तिना जो किस प्रकार याद करना चाहिदा। हेलो
1: हां जी हां जी
0: जी,
1: देखा 99 च होए थे ना ये लड़ाई, तो ना कितना मतलब इतनी लड़ाई की थी इन्हें, तो इन्हें बीजेपी हाँ इस कुछ नहीं करते, इस दिन तो सेलिब्रेट कर ही सकते ना, उन्हें याद कर सकते, उन्हें सैल्यूट दा कर ही सकते हाँ
0: जी जी,
1: और अपने बच्चे भी सिखाई सकते, दस सकते जी हाँ हाड़े बच्चे अजकल कई हैं, मतलब कुछ कितने रोंग टर्न च जा रहे हैं ना, कितने गलत वे च जा रहे।
0: जी जी
1: उन्हें समझाई सकते कि दिखा, उन्हें भी दस सकते हाँ कि दिखा कि हाड़े वीर जवान जड़े इनसे कि कितने स्ट्रगल करते कने कि क्या होता इन्होंने इतना दस सकते हाँ कई कुछ गल होनी है।
0: जी जी समझाई सकते ना जी तिना,
1: हाँ जी बड़े तरीके ना, हाँ जी उन्हें उन्हें दे मतलब हाँ दसी सकते कि देखो मतलब डेमो है नी कि मतलब दिखा कि थोड़े मुँह अगे कि क्या होता, अजकल तो फोटो वीडियो च फोने च भी वीडियो टीवी च भी रेडियो हर चीज च मतलब दसी जा रहे इक इक चीज खबर दा रेडियो दिखदे पर हां फोन दे थ्रू भी दिखा दे टीवी च
0: भी
1: दिखा
0: दे
1: सब
0: थ्रू
1: कुछ
0: भी हां सुना दे ना असि
1: हां जी ता क्या होदा क्या री दिखा दे कियां कियां कियां लड़ाई हुंदी कियां क्या नहीं हुंदा
0: जी। ता इंद जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: सुनाई दे कोई देशभक्ति भरी कोई अच्छा जिहा गाना सुनाई दे अपनी पसंदा दा
0: जी जरूर जी मेरी पसंदा दा गीत तुहां तक पहुंचाने दे जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
1: जी।
0: जी। तशो तो चल दे न गीत दी ओर फरमाइश दी ओर सुन दे निसा प्यारी दिया फरमाइश आजो।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गीत हाँ फरमाइश हाँ पहुँचाई इंदु जी तक ने सरहने वाले न सिद्धवाड़ी ते तशो तो विदेश MBBS करने वाले जितने भी छात्र हैं तिना वास्ते उन जड़े से इंटर्नशिप करना जरूरी है। इसी कन्ने अगली जेड़ा जानकारी है बैच वाइज जेड़ा भर्ती है तिसदी योग्यता जो नज़रअंदाज करना गैर कानूनी है। कने इसी कन्ने 30 जुलाई ते शुरू होनी है किन्नर कैलाश यात्रा, तो ज़रूर ये जानकारी तुहां तक पहुँचाई। कने इसी जानकारी ते बाद अहां अपनी जेड़ा गलबात है तिहा पर वापिस आई आते न पशु तो गलबात अहां करा देन कि अजकड़ा जेड़ा दिन है कारगिल विजय दिवस जेड़े से अज अहां बना देन, पर अजकड़ा जेड़ा दिन पूरा ही जितने भी शहीद हैं तिना जो समर्पित है या जेड़ा भारतीय सेना है तिना वास्ते समर्पित है। कने जेड़ा गल करिए अजकड़ा जेड़ा दिन है सियाहां वास्ते खास है, कर तो हम किस तरीके ने इस दिने जो खास बना देन, बर्फीली चोटियां च जिड़ा गोलियां दा सम्मान करा दे थे या 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस जिड़े से 1999 दी एक इतिहासिक दिन या याद अहां बोली सकते या जिड़ा वीर जवान तिना जो नमन कर दे इस दिन वास्ते

क्योंकि अजकने दिन ही जेड़ा घर च तिरंगे च सलाम करी करी जेड़ा इसी अहां जो बोलना चाहिदा कि सलाम जेड़ा इसे जितने भी शहीद हैं तिना जो करना चाहिदा जय हिंद या जय बंदे मातरम जेड़ा इसे जरूर तिना जो सलूट करना चाहिदा। इसी कन्ने तुहां सारे जो ही जितने भी देशवासी हैं तिना जो कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि दिन की शुरुआत हमेशा हम बोलते हैं कि एक प्यारे दे विचार करने करना चाहिए, या हम अपने बच्चों जो या युवा पीढ़ी जो खुद पर गर्व भी करना चाहिए, कने जितने भी दिवस हैं तिना ते अहाँ क्या सीख जड़े से लेंदे न से अहाँ पर निर्भर करते। हर किसी का सपना अलग अलग है, हर कोई अपने सपने जो साकार करने वास्ते मेहनत करते है, मेहनत करी करी अहाँ अपने सपने जो साकार करते न तो ज़रूर मेहनत करा अपने सपने जो साकार करा करें हमेशा खुश रहा। इसी कन्ने अपने माता पिता का मान सम्मान भी जरूर करा, क्योंकि हर चीज़ अहाँ वास्ते ज़रूरी है, चाहे परिवार की गल करिए चाहे कोई भी काम में, हर काम अहाँ वास्ते ज़रूरी है। इसी कन्ने अहाँ थोड़ा दे अग्गे बढ़ते हैं ना, कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुँचानी है, क्योंकि इंतज़ार तो तुहां जो ज़रूर है ना, थोड़ा दे इंतज़ार करना तो बनता है ना, गलबात भी तो जरूर तुहां तक पहुंचानी है। इस बरसात के मौसम का भी जरूर तुहां जिहड़ा आनंद है से लै दे होने, चलते ना सुनते ना इस प्यारी दिया फरमाइशा जो।

श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक आपनी रेडियो तो शशि कहने तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाते हैं कने अज कने दिने दी गल करिए तो 26 जुलाई दी और भी खास है अपने आस पास की जड़ा जानकारियां ना उसे जरूर रखना जरूरी होंगे। नगरोटा वगमा की गल करिए बाल मेला जड़े से जरूर तो आज इंजॉय करा दे होने अज कने कल जड़े से बाल मेला जड़े से लग गए इसी कने जड़ा निशुल्क मेडिकल कैंप हैं सभी इस बाल मेले च मिलते हैं कने जड़ा आइसक्रीम है या सारिया चीज़ा जड़ा ना से कुथी ना कुथी फ्री जड़े से मिलती हैं कने तो सारे ही जरूर इस बाल मेले का लुप्त जड़े से जरूर लैते होने न। बाल मेला यानी कि जड़ा हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं सभी जरूर होने न कने से जड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं से 26 जुलाई जो जड़े से नंगरोटा भगवा गांधी ग्राउंड जड़े से जरूर होने कने जड़ा कॉलेज के बच्चे न विद्यार्थी न तिना जरूर रंगमंच संस्कृति जड़ा प्रस्तुत है से करनी है। विशेष मनोरंजन संध्या जड़े से 27 जुलाई जो जड़े से स्टार गायक जड़े से अपनी शानदार जड़ा प्रस्तुति है से जरूर रखनी है कने तुहां सारियां भी इस बाल मेले दा जरूर लुप्त जड़े से लेना है। अशो तो जरूर इसी कने अपने स्वास्थ्य दा जड़ा ख्याल है सभी रखना है क्योंकि स्वास्थ्य हाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है से तुहां सारे जो ही पता है कने जरूर तुहां इस मेले दा आनंद जड़े से लिया कने अपना जड़ा ख्याल है सभी जरूर रखा इसी ख्याल कने यहाँ तुहांदा भी ख्याल रखना है। समय दे अनुसार श्रोता व्हाट्सएप मैसेज करा देना तीना दा नाम भी जरूर तुहां तक पहुँचाना है तुहां जो भी इंतज़ार रहिंदा है कि हुण कुदी फरमाइश जड़े से तुहां तक पहुँचाने लई है कने कुथों दे रहने वाले न ते रहने वाले न कांगड़ा ते कने तीना दा नाम है पवना जी तो जरूर पवना जी तक हाँ गीत पहुँचा देन गीते दे बोल भी जरूर तुहां तक पहुँचाई देन तुहां हमेशा इस गीत जो सुनते रहते हैं है भी प्यारा दिया कांगड़े का ही गीत जीना कांगड़े का तो अशो तो कुछ कुछ जो जीना कांगड़े का प्यारा लगता तो सारे जो ही ना जरूर इसी कने इस गीत जो भी जरूर इंजॉय करा।

दर्शकों जरूर तो इस गाने दे बोल सुने होने ने कि सौ काम पर बेल एक मिनट वास्ते नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बोल है कि घरे दे काम जरा ने से कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, पर थोड़ा जहा मौज मस्ती करना भी हम वास्ते जरूरी है।

पर श्रोताओ, जो कि हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तो ज़रूर तो हाँ एक कार्यक्रम इंजॉय करा दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने उन्हें कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है सह जो बोला था कि उन अनुमति जिहड़ा है से ले लिया। इस सफर तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक, तो जरूर अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कन्ने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब गोना गोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठ स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: कुछ दूं पर एचआईवी कभी ना दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।

0: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
3: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
2: किससे?
3: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है। रात को सपने में देखा था ना।

मेरे प्यारी दोस्तों, 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के

मैं न सोया कभी झूलों में, जीना लगा मेरा फूलों में। मैं न सोया कभी झूलों में, जुल्फों के साए में ही नींद आई आई आई।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: वाले नहीं मान रहे तो भाग के शादी कर लो।
1: यार क्या बोल रही है तू? हम शादी पापा की मर्जी से ही करेंगे और अगर हमारा प्यार सच्चा होगा
2: तो महादेव हमें खुद मिलाएंगे।
3: मैंने सुना है एक जगह है, यहाँ शिव और पार्वती का विवाह स्वयं विष्णु जी ने करवाया था, त्रियोगी नारायण मंदिर। अगर आप दोनों

रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

0: मैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।
1: ओ मनी चाल, माता रानी आ गई।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।